Good morning, Chhatrapati Sambhaji Nagar. You are listening MGM 90.8 FM and exactly at the 7012 मिनिटांची ही वेळ झालेली आहे आणि आज वार आहे शनिवार. यार शनिवार म्हणजे कसं एकदम रिलॅक्स असते और यार एक ही दिन का हम पूरे हफ्ते भर इंतजार करते वो है आज का दिन. क्या है ना, देखो जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज है उनको शनिवार के दिन आराम करने का मौका मिलता है और भले आज उनको ऑफिस क्यों ना हो लेकिन एक स्ट्रेस लेवल कम होता है और एक पॉजिटिव वाइब अपने आप बढ़ ही जाती है क्योंकि हमें पता है कि भाई कुछ भी हो जाए आज थोड़ा काम करना है फिर वीकेंड एंजॉय करना है. तो अब इसी तरीके से वीकेंड वाली मॉर्निंग को और भी बेहतरीन बनाते हैं मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ और आपका वीकेंड खूबसूरत तरीके से गानों के साथ खुशनुमा करते हैं. बहुत सारी बातें होगी आज के शो में, मुलाकातें होगी, हसीन नगमों का साथ भी होगा क्योंकि साथ है तो बात है. लौट कर आऊंगा कुछ ही देर में, तब तक के लिए एंजॉय करना इनडी सुपर डुपर हिट गानी मी एंड योर फेवरेट रेडियो स्टेशन MGM 90.8 FM इन द शो.

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: कुछ लोगों के जेब में पैसे कम होते हैं पर सपने बहुत बड़े होते हैं। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा टैलेंट पता है क्या है? खाली पॉकेट में भी फ्यूचर इमेजिन कर लेना। एक लड़का था, नाम समीर। पॉकेट में सिर्फ 120 रुपए थे पर मोबाइल की गैलरी में फॉरेन ट्रिप के स्क्रीनशॉट पड़े थे। कभी एक्सपेंसिव कैफे के अंदर खड़े होकर मेनू देख लेते, कभी शोरूम के ग्लास में खुद को एक्सपेंसिव जैकेट में इमेजिन करता। लोग हंसते थे, भाई औकात देख, पर सपने कभी औकात देख के थोड़ी आते हैं। समीर दिन में कॉलेज करता, रात को पार्ट टाइम काम करता, कभी रिचार्ज के पैसे नहीं होते, कभी दोस्त बर्थडे पार्टी पर बुलाए तो एक्सक्यूज देने लगता था क्योंकि पैसे ही नहीं है। पर एक चीज कभी नहीं छोड़ी उसने, उम्मीद। उसकी रूम की वॉल पर एक पेपर चिपका था, एक दिन सब हो जाएगा। सिंपल लाइन थी पर उसके लिए मोटिवेशन थी। फिर एक दिन बहुत सालों बाद समीर ने अपनी पहली सैलरी से कुछ बड़ा नहीं खरीदा, ना आईफोन ना ब्रांडेड शूज। उसने सीधा घर जाकर मम्मी के हाथ में पैसे रख दिए और कहा अब थोड़ा आराम कर लो। उस दिन समझ आया मिडिल क्लास लोग खुद के सपने बाद में पूरे करते हैं, पहले घर के सपने पूरे करते हैं। और शायद इसीलिए जब उनकी लाइफ चेंज होती है तो सिर्फ स्टेटस नहीं बदलता, पूरी कहानी बदल जाती है।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

आजकल एक लाइन बहुत कॉमन हो गई है ना, भाई चाय में शुगर कम करा, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते पता है? शायद से वो अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना अब शुरू कर चुके हैं। हेलो, मैं हूँ आरजे अदनान और आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM और बात करते हैं अपने हेल्थ के बारे में। शुगर कम बोलने के बाद भी हम सीक्रेटली बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई पूरे हिसाब से खाते है। सच्ची कहना, झूठ मत बताना भाई, आपने मुस्कराया। देखो, शुगर दुश्मन नहीं है, पर एक्स्ट्रा शुगर बॉडी को धीरे धीरे टायर्ड बना देती है। एनर्जी पहले हाई, फिर अचानक लो, मूड स्विंग्स, लेजनेस और कभी कभी वेट भी साइलेंटली बढ़ने लगता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम एकदम से बोल देते हैं, बस यार आज से शुगर बंद, और दूसरे दिन ही फ्रिज में रखी मिठाई हमें इमोशनल लुक देने लगती है और हम फिर क्या खा लेते हैं। चाय में 2 चम्मच शुगर लेते हो तो पहले 1.5 चम्मच करो, फिर आदत लगने दो। ऐसा ही करके आप ना शुगर कट कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की जगह कभी नींबू पानी ट्राई करो। लेट नाइट मिठाई खाने की जो आदत है ना, तो उसको चेंज करो, और बेडरूम में जो चॉकलेट है ना, वो थोड़ी साइड में रखो, वरना बार बार वही आपका दिमाग जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेबल्स पढ़ना स्टार्ट करो। कभी कभी हेल्दी लिखी हुई चीजें में भी हिडन शुगर छुपी होती है। और हाँ, लाइफ में स्वीटनेस कम मत करो, बस शुगर थोड़ी स्मार्टली हैंडल करो, और देखो फिर बहुत सारी बीमारियां टाटा बाय बाय हो जाएगी। ये बात याद रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए।

0: मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल, इसी बात को लेकर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, आज का मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो उसके बात करने के तरीके में, रहन सहन में कुछ बदलाव आते हैं क्या?
1: आ सकते हैं, और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना माइनर लेवल पे आते हैं तो वो सेल्फ या अदर्स वो नोटिस भी नहीं कर सकते, पर जो बदलाव आते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सिम्टम्स क्या है, कि जैसे नींद बढ़ना या घटना, भूख बढ़ना या घटना, कभी कभी रोना आ जाना, है ना, क्योंकि उदासी है और परसिस्टेंट उदासी है तो खाली लगना, रोना आना, ये कुछ चीजें, और डिसीजन ना ले पाना, ये कुछ चीजें हैं। बट इन एडिशन कभी कभी ना हाइजीन पे भी चीजें आ जाती हैं कि उस व्यक्ति को ऐसे लगता है, बड़ा थका हुआ फील होता है, जैसे हम बोलते हैं फटीक, जैसे शरीर में भारीपन आ जाना। अब शरीर जब हमारा भारी हो जाता है तब हमें बेड से उठने का ही मन नहीं करता, अब जब बेड से उठने का ही मन नहीं करता तो फिर न ब्रश करने का मन होगा, न नहाने का मन होगा, पढ़ने का मन होगा, न बात करने का मन होगा, न काम पे जाने का मन होगा, और फिर वो आदमी अकेला ही रहना चाहेगा, बिकॉज उनके लिए बात करना भी बहुत उनके लिए ना थकावट वाली चीज हो जाएगी, तो वो व्यक्ति अकेले अकेले गुमसुम आइसोलेशन में भी रहने लग जाते हैं।
0: सो ये सभी बातें याद रखिएगा और आपकी मेंटल हेल्थ को वेल कीजिएगा। बाकी आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो हमें DM कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जल्दी करें, देर मत करें और सुनते रहें।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. और इस वक्त हम गाने की फरमाइश पूरी करते हैं और आज गाने की फरमाइश आई है वेंकटेश मोड़े इनकी तरफ से इस गाने के लिए.

जलते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में नमक हराम इस फिल्म से गाना है और ये फिल्म आई थी 1973 में। सोशल फैमिली ड्रामा था, इसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा असरानी, रजा मुराद एंड ए के हंगल जी थे और विनर ऑफ टू फिल्म फेयर अवार्ड यानी कि बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार साहब को अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में अमिताभ बच्चन जी को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। और ये जो गाना है जिसकी फरमाइश की है तो आर डी बर्मन जी ने इसका म्यूजिक दिया था और सिंगर थे किशोर कुमार जी एंड नमक हराम इस फिल्म का नाम है और इसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। तो चले फिर अब बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद ये फरमाइश वाला गाना अभी हम एंजॉय करते हैं, दिए जलते हैं गाना। एंड दोस्तों आपकी भी फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो MCM University Institute of Indian and Foreign Language लेकर आया है BA Honors in English, MA English, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG Diploma in Arabic, Diploma Programs, Creative Writing in English, Sanskrit, French, German, Urdu, Japanese, Persian and Translation.
0: Limited seats available. Visit www.mgmu.ac.in or call करें 9763679245 और 9665353515.

0: विथ मी, माई हस्बैंड इज बीटिंग मी।
1: इस टाइप का कॉल आता है पुलिस को और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। आजकल हम देखते हैं कि महिला अत्याचार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है। एंड एक ऐसा ही कॉल आधी रात में पुलिस डिपार्टमेंट के सखी वन स्टॉप सेंटर पे आ चुका था। आधी रात का वक्त था और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया एक लड़की ने, जिसको ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, वो बाहर की थी। और जैसे तैसे उसने तमिल और इंग्लिश में ये सब बताया और कुछ ही देर में ना तो उस लड़की की मदद करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के महिला पुलिस उसके घर तक पहुंच गए और उसको उसके हस्बैंड से उन्होंने बचा लिया, जो कि उसको बहुत पीटता था, बहुत मारता था। और अक्सर कहते ना कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर ये इसका एक अलग एग्जांपल है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है अपने शहर, अपने पूरे जिले के अंदर, जिसमें 24/7 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सखी काम करती है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1-800-181-181। तीन लैंग्वेज में मैंने कहा, याद रखिएगा नंबर। जो भी लड़कियां महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी परेशानी में हो और कोई भी दिक्कत उनको आती हो, तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर पर कॉल करके मदद मांग सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगा। बस ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिए 181। और अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक तकरीबन 139 महिलाओं की इन्होंने हेल्प की है इमरजेंसी के वक्त पर, जो कि अत्याचार सहन कर रही थी, जिनको बहुत जरूरत थी, जिनको मेडिकल सर्विस चाहिए थी, इन सभी तरह की हेल्प इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको मिल सकती है। तो सभी महिलाओं ने एक नंबर याद रखना हमेशा, 181, जो कि आप सभी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सो थैंक यू पुलिस डिपार्टमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून्ड।
2: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhaji Nagar.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

आजकल फ्री वाला जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सब महसूस हो रहा है। You're listening MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और कहना पहले मूवीज के लिए सब्सक्रिप्शन लो, ये शुरू हुआ था, फिर म्यूजिक के लिए सब्सक्रिप्शन, अब सोशल मीडिया यूज करने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए प्लस प्लान अनाउंस किए है। अब टेंशन मत लो यार, नॉर्मल स्क्रोलिंग, चैटिंग और मीम्स भेजना एकदम फ्री रहेगी। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिश और एडवांस फीचर चाहिए तो थोड़ा पॉकेट हल्का करना पड़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम प्लस, इसमें आपको मिल सकता स्टोरी एनालिटिक्स और प्रोफाइल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, मतलब बस डीपी नहीं चेंज होगी, प्रोफाइल अपनी वीआईपी भी लगेंगी। फेसबुक प्लस में ऑडियंस इनसाइट्स और एंगेजमेंट एनालिटिक्स भी मिलेगा। और व्हाट्सएप प्लस में स्टिकर्स, थीम्स और एक्स्ट्रा चैट पिन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। मतलब सब कुछ अब एडवांस होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप प्लस के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि व्हाट्सएप चैट्स पहले की तरह ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगी और बेसिक यूज फ्री ही रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, मेटा आप सोशल मीडिया को फ्री ऐप से प्रीमियम एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहा है। बाय द वे, मुझे आप ये बताइएगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर यूज करना पसंद करोगे या तो फ्री वाला जो वर्जन है वही यूज करना ज्यादा पसंद करोगे। डीएम करना इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर एंड स्टे

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: डिनर का मूड हो या फॅमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.

अभी आप आपके घर से बाहर निकल चुके होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, हेलमेट पहना है या फिर फोर व्हीलर के अंदर आपने सीट बेल्ट लगाया है। नहीं ना, जानता हूँ मैं यार। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। दोस्तों, अपने महाराष्ट्र में ना तो ट्रैफिक पुलिस फुल एक्शन मोड पर आ चुकी है, क्योंकि सिर्फ 4 महीनों में पूरे स्टेट में लगभग 56 करोड़ से ज्यादा उन्होंने फाइन वसूल किया है। और सबसे ज्यादा पकड़े कौन गए पता है क्या? वही लीजेंडरी राइडर्स जो कहते अरे मुझे तो बस ये नाके तक ही जाकर आना है, मैं क्यों हेलमेट पहनूं, क्या ही जरूरत है। और डेटा के हिसाब से लाखों बाइकर्स बिना हेलमेट के पकड़े गए, उनका ही सबसे ज्यादा फाइन है। उसके बाद ओवर स्पीडिंग, बेल्ट ना लगाना, इलीगल पार्किंग, इंश्योरेंस ना होना, ट्रिपल सीट राइडिंग, इन जैसे केसेस में भी फाइन भर चुका है। मतलब कुछ लोग बाइक को बाइक नहीं समझते, फैमिली पैकेज समझते, एक बाइक पर तीन तीन दोस्त चले जाते हैं और तीसरा दोस्त बीच में ऐसा बैठता है जैसे कि अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर रहा हो। ट्रैफिक पुलिस ना तो एकदम स्मार्ट हो चुकी है, थर्ड आई उनकी हमेशा हम पर नजर रखती है, वही जो ऊपर से फोटो क्लिक करता है ना सिग्नल के ऊपर रास्तों में जहां पर आपको सीसीटीवी कैमरास दिखते हैं, तो उनके जरिए भी फाइन वसूल करना शुरू है। लेकिन मजाक बात एक साइड दोस्तों, एक बात याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ फाइन से नहीं बचाता आपको, आपकी जिंदगी भी बचाता है, क्योंकि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है, ये भी बात याद रखिए। तो नेक्स्ट टाइम बाइक स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल चेक करो या ना करो, हेलमेट लिया है और सीट बेल्ट लगाया है क्या, ये भी चेक करो। सेफ रहो, सुरक्षित रहो एंड सुनते रहो। All is

गाइस जस्ट इमेजिन यार, आप ना तो एक फॉरेन टूर पर जा रहे हो नेपाल और वहां पर जाकर आपको सब कुछ फ्री में देखने का, घूमने का, रहने का मौका मिले, तो मौके का फायदा तो उठाओगे ना आप, तो यही आपको मौका मिलने वाला है। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, क्योंकि देखो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते होगे, रील्स बनाते होगे, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। नेपाल टूरिज्म एम्बेसी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकाली है, जहां सिलेक्टेड क्रिएटर्स को नेपाल घूमने का मौका मिलने वाला है फ्री में। मतलब आपका इंस्टाग्राम ट्रैवल्स फोटोज इनसे भरा हो तो ड्रोन शूट्स, कैफे, रील्स, माउंटेन्स और सिनेमेटिक ट्रांजिशन आपको एकदम बेहतरीन आते हो, फायदा उठाइएगा। अब सिंपल है कि यार कंडीशंस क्या हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट अच्छे होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको नेपाल टूरिज्म प्लेस को प्रमोट करना होगा, तो उसके लिए वीडियोस, रील्स और फोटोज क्लिक करनी होगी। मतलब वेकेशन भी और असाइनमेंट भी आपकी होने वाली है। चलो ये तो सुनहरा मौका है, तो आप भी कंटेंट क्रिएशन करते होगे तो नेपाल टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो और वहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स है ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दूसरे से कहने लगे, तो बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
0: MGM 90.8 FM साथ

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
2: साथ है तो बात है।
0: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर,
3: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।
2: माझा नादी लागू नको सिंधू।
3: अहो आता कसला नाद, पारखोळी झाली आहे मी।
2: करणार कायस या खोळाचं?
3: तुम्हाला
2: आणि पळवून देऊन काय करणार?

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शनिवार की ये खूबसूरत शाम लेकर आई है थोड़ा रिलैक्स होने का समय, थोड़ा म्यूजिक और ढेर सारी अच्छी वाइब्स। पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद आखिर आ ही गया वो वक्त जब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। कोई दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होगा, कोई फैमिली के साथ चाय एंजॉय कर रहा होगा और कुछ लोग बस अपने मन पसंदीदा गाने सुन रहे होंगे और इस शाम को महसूस कर रहे होंगे। तो जहाँ भी है, जैसे भी है, बस मुस्कुराइए क्योंकि आज की शाम सिर्फ पॉजिटिविटी और अच्छे मूड के नाम है। और हाँ, अगर आपको कोई फेवरेट गाना है जो इस शाम को और खास बना दे तो हमें ज़रूर बताइए थ्रू माय इंस्टा हैंडल। मेरे इंस्टा आईडी है rjmanisha_। आज के शो में हम बात करेंगे ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की, सुनेंगे शानदार गाने और साथ बिताएंगे ये प्यारी सी शनिवार की शाम। तो कहीं मत जाइए क्योंकि म्यूज़िक का मज़ा अब होने वाला है और भी ज़बरदस्त। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा एंड ऑफकोर्स मिलते हैं कुछ शानदार गानों के साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में हम सब के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे याद करके कभी दुख होता है, कभी पछतावा होता है, तो कभी लगता है काश उस वक्त ऐसा किया नहीं होता। लेकिन सच बताऊं, अगर हम हर वक्त अपने बीते हुए कल को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आने वाला अच्छा कल कभी खुल कर भी जी नहीं पाएंगे। गलतियां सबसे होती है, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, तो कभी खुद के फैसलों में। लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि हर नया दिन हमें एक नया मौका देता है। जो बीत गया वो सिर्फ एक कहानी है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। आपका पास्ट आपको सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। कई बार लोग अपने पुराने दर्द, फेलियर या बुरी यादों को इतना दिल से लगा लेते हैं कि वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर रात अंधेरी है तो सुबह भी जरूर आएगी। तो आज शनिवार की शाम खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि जो बातें आपको अंदर से तोड़ती है उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर उन चीज़ों से कई ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है जो पीछे छूट चुकी है। सो ऑफ कोर्स कुछ अच्छे गाने सुनिए एंड कुछ अच्छी वाइब को महसूस कीजिए। सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल की जिंदगी इतनी तेज हो गई है ना कि हर कोई बस भाग रहा है, कभी करियर की टेंशन, कभी रिश्तों की चिंता, तो कभी भविष्य को लेकर डर। ऐसे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी लगती है तो वो है स्टेबिलिटी, यानी जिंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ा बैलेंस। स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ अच्छा पैसा या बड़ी नौकरी नहीं होती। असल स्टेबिलिटी तब महसूस होती है जब आपका मन शांत हो, जब आप छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीख जाए और जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आने पर भी आप खुद को संभालना जानते हो। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर प्लान सफल नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान अंदर से मजबूत हो तो मुश्किल वक्त भी धीरे धीरे गुजर जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी तभी सेट होगी जब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। हमें ही खुद को हर हालात के लिए थोड़ा मजबूत और थोड़ा शांत बनाना पड़ता है। तो अगर आजकल जिंदगी थोड़ी उलझी हुई लग रही है तो खुद पर भरोसा रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स वक्त दीजिए खुद को और वक्त को भी, एंड सुनते रहिए MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो सीधे दिल से जुड़ जाते हैं। और ऐसा ही एक खूबसूरत गाना चाहूं मैं या ना। इस गाने की सबसे खास बात ये है कि इसमें प्यार की वो फीलिंग है जिसे शायद हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। किसी को दिल से चाहना लेकिन उस एहसास को शब्दों में ना कह पाना, बस सामने वाला खुश रहे यही सोचना। जैसे कि ये लाइन, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, ये लाइन सुनते ही दिल कहीं ना कहीं रुक सा जाता है, क्योंकि कई बार प्यार में इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि वो अपने दिल की सुने या डर की। आशिकी 2 का ये गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसकी सादगी और इमोशन दोनों बहुत रियल लगते हैं। ना ज्यादा शोर ना दिखावा, बस दिल की बात। और सच कहे तो कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन एहसास बहुत गहरे होते हैं। तो अगर आपने कभी भी किसी को चुपचाप दिल से चाहा है तो ये गाना उसे जरूर सुनाइए, हमसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम सुना देंगे। एंड ऑफकोर्स स्टे ट्यून्ड टू MGM90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688। Admission open MGM University School of Engineering and Technology.
5: Programs B.Tech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Code Chhatrapati संभाजीनगर।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आजकल अगर किसी को पूछ लो रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तो जवाब मिलता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये जेंजी वाला प्यार भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी सीन पर दिल टूट जाता है तो कभी टाइपिंग देखकर खुशी वापस आ जाती है। आज के रिश्ते में प्यार है, केयर है, लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी बहुत है। कभी लोग घंटों चैट करते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स खुलकर बोलने से डरते हैं, और कभी एक छोटी सी गलतफहमी पूरे रिश्ते को दूर कर देती है। जेंजी रिश्तों की सबसे खास बात ये है कि ये लोग सिर्फ प्यार नहीं पीस भी चाहते हैं। उन्हें रिश्ता चाहिए जहां दिखावा कम हो और समझ ज़्यादा, जहां दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि जैसे है वैसे एक्सेप्ट करें। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कंपैरिजन भी बहुत बढ़ गया है। हर किसी को लगता है कि दूसरों की लव स्टोरी परफेक्ट है, जबकि असल में हर रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी नाराजगी और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें तो होती है। तो अगर आप भी किसी रिश्ते में हैं तो बस इतना याद रखिए, रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और थोड़ा पेशेंस हो। और अगर अभी सिंगल है तो टेंशन मत लीजिए यार, हम जैसे लोग ना बहुत खुशनसीब है। स्टे ट्यून्ड, एमजी 90.8 एफएम साथ है तो बात है।

रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों अगर बात करें मिलेनियल्स की तो ये वो जनरेशन है जिसने प्यार को भी दिल से जिया है और हार्ट ब्रेक को भी क्वाइटली हैंडल किया है। इनके रिश्तों में सिर्फ आई लव यू नहीं होता बल्कि साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। मिलेनियल लोग इस दौर से आए हैं जहां लेट नाइट कॉल्स का अलग एक्साइटमेंट था, व्हाट्सएप से पहले लंबे मैसेजेस और मिलने का इंतजार भी खास लगता था और शायद इसीलिए इनके रिश्तों में इमोशंस थोड़े ज़्यादा गहरे होते हैं। लेकिन आज की फास्ट लाइफ में इनके लिए रिलेशनशिप आसान भी नहीं होती। करियर बनाना, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब के बीच कई बार लोग अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देते हैं। कई मिलेनियल्स आज भी सही इंसान का इंतजार कर रहे हैं और कई लोग रिश्ते में होकर भी बस एक सुकून और समझ चाहते हैं। इनके लिए प्यार सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि वो इंसान है जो मुश्किल दिनों में भी साथ खड़ा रहे, जो बिना कहे समझ जाए कि सामने वाला ठीक नहीं है। और सच कहे तो मिलेनियल्स ने रिश्तों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिल से निभाने की भी कोशिश की है। तो अगर आप भी मिलेनियल जनरेशन से है तो खुद को थोड़ा क्रेडिट जरूर दीजिए क्योंकि आपने रिश्तों में पेशेंस भी रखा है और लॉयल्टी भी। सो यार आप सुनते रहिए MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दोस्तों, कभी ना कभी दिल में एक सवाल जरूर आता है, क्या सच में इस दुनिया में प्यार होता भी है? क्योंकि आजकल रिश्ते जल्दी बनते भी है और जल्दी टूट भी जाते हैं। लोग साथ रहने की बातें तो करते हैं, लेकिन वक्त आने पर कई बार बदल भी जाते हैं। ऐसे में दिल कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि क्या सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों और गानों में होता है? लेकिन अगर ध्यान से देखें तो प्यार आज भी है, माँ के हाथ के खाने में, पापा की चिंता में, दोस्तों के उस मैसेज में, घर पहुंच गया क्या, और उस इंसान में जो बिना मतलब आपके चेहरे की उदासी समझ जाए। प्यार हमेशा बड़े शब्दों में नहीं मिलता, कभी कभी वो छोटी छोटी बातों में भी छुपा होता है। किसी का आपका इंतजार करना, किसी की बातों को याद रखना, या मुश्किल समय में बस चुपचाप आपके साथ खड़े रहना, यही तो प्यार है। हाँ, ये सच है कि हर रिश्ता हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी दिल टूटता है, कभी भरोसा भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। मतलब सिर्फ इतना है कि शायद सही लोग अभी मिलने बाकी है। तो अगर कभी जिंदगी में प्यार को लेकर भरोसा कम होने लगे तो बस इतना याद रखिए, इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, सच्चे एहसास है और प्यार भी है। बस उसे महसूस करने के लिए दिल खुला होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड, टाइम ड्रीम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.
1: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर।

0: देखते ही देखते ये खूबसूरत शनिवार की शाम अब धीरे धीरे अलविदा कहने लगी है। और सच कहे अच्छी शामें हमेशा थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। आज के शाम में हमने साथ में बातें की, कुछ खूबसूरत एहसास शेयर किए, कुछ यादों को महसूस किया और शानदार गानों के साथ थोड़ा मुस्कुराए भी। उम्मीद है कि आपका ये वक्त अच्छा गुजरा होगा और हमारे साथ बिताया हर पल आपको पसंद आया होगा। शनिवार की शाम का अपना ही अलग मैजिक होता है, थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून और आने वाले नए हफ्ते से पहले खुद के साथ थोड़ा वक्त। तो जाते जाते बस इतना कहूंगी, अपनों के साथ जुड़े रहिए, खुद का ख्याल रखिए और जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर इस पूरे शो में कोई बात, कोई गाना या कोई एहसास आपके दिल को छू गया हो तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चिंता मत कीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई शाम, एक नए गाने और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी को दिल से जीते रहिए और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्याचा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
5: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
4: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्ती बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसन लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688। Admission open MGM University School of Engineering and Technology.
6: Programs B.Tech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati संभाजीनगर।

0: हेल्प मी, माई हस्बैंड इज बीटिंग मी।
1: इस टाइप का कॉल आता है पुलिस को और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। आजकल हम देखते हैं कि महिला अत्याचार बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रही है। एंड एक ऐसा ही कॉल आधी रात में पुलिस डिपार्टमेंट के सखी वन स्टॉप सेंटर पे आ चुका था। आधी रात का वक्त था और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया एक लड़की ने, जिसको ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, वो बाहर की थी। और जैसे तैसे उसने तमिल और इंग्लिश में ये सब बताया और कुछ ही देर में ना तो उस लड़की की मदद करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के महिला पुलिस उसके घर तक पहुंच गए और उसको उसके हस्बैंड से उन्होंने बचा लिया, जो कि उसको बहुत पीटता था, बहुत मारता था। और अक्सर कहते हैं ना कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर ये इसका एक अलग एग्जांपल है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है अपने शहर, अपने पूरे जिले के अंदर, जिसमें 24/7 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये सखी काम करती है। और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1-800-181-181। तीन लैंग्वेज में मैंने कहा, याद रखिएगा नंबर। जो भी लड़कियां महिलाएं किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी परेशानी में हो और कोई भी दिक्कत उनको आती हो ना, तो वो सखी वन स्टॉप सेंटर पर कॉल करके मदद मांग सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगा। बस ये हेल्पलाइन नंबर याद रखिए 181। और अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक तकरीबन 139 महिलाओं की उन्होंने हेल्प की है इमरजेंसी के वक्त पर, जो कि अत्याचार सहन कर रही थी, जिनको बहुत जरूरत थी, जिनको मेडिकल सर्विस चाहिए थी, इन सभी तरह की हेल्प इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको मिल सकती है। तो सभी महिलाओं ने एक नंबर याद रखना हमेशा, 181, जो कि आप सभी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सो थैंक यू पुलिस डिपार्टमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून्ड।

महसूस हो रहा है। You're listening MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और कहना पहले मूवीज के लिए सब्सक्रिप्शन लो, ये शुरू हुआ था, फिर म्यूजिक के लिए सब्सक्रिप्शन, अब सोशल मीडिया यूज करने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए प्लस प्लान अनाउंस किए है। अब टेंशन मत लो यार, नॉर्मल स्क्रोलिंग, चैटिंग और मीम्स भेजना एकदम फ्री रहेगी, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्टाइलिश और एडवांस फीचर चाहिए तो थोड़ा पॉकेट हल्का करना पड़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम प्लस, इसमें आपको मिल सकता स्टोरी एनालिटिक्स और प्रोफाइल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, मतलब बस डीपी नहीं चेंज होगी, प्रोफाइल अपनी वीआईपी भी लगेंगी। फेसबुक प्लस में ऑडियंस इनसाइट्स और एंगेजमेंट एनालिटिक्स भी मिलेगा और व्हाट्सएप प्लस में स्टिकर्स, थीम्स और एक्स्ट्रा चैट पिन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। मतलब सब कुछ अब एडवांस होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप प्लस के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि व्हाट्सएप चैट्स पहले की तरह ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगी और बेसिक यूज फ्री ही रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, मेटा आप सोशल मीडिया को फ्री ऐप से प्रीमियम एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहा है। बाय द वे, मुझे आप ये बताइएगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर यूज करना पसंद करोगे या तो फ्री वाला जो वर्जन है वही यूज करना ज्यादा पसंद करोगे। डीएम करना इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर एंड स्टे

अभी आप आपके घर से बाहर निकल चुके होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, हेलमेट पहना है या फिर फोर व्हीलर के अंदर आपने सीट बेल्ट लगाया है, नहीं ना, जानता हूँ मैं यार। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। दोस्तों आपने महाराष्ट्र में ना तो ट्रैफिक पुलिस फुल एक्शन मोड पर आ चुकी है, क्योंकि सिर्फ 4 महीनों में पूरे स्टेट में लगभग 56 करोड़ से ज्यादा उन्होंने फाइन वसूल किया है। और सबसे ज्यादा पकड़े कौन गए पता है क्या? वही लीजेंडरी राइडर्स जो कहते अरे मुझे तो बस ये नाके तक ही जाकर आना है, मैं क्यों हेलमेट पहनू, क्या ही जरूरत है। और डेटा के हिसाब से लाखों बाइकर्स बिना हेलमेट के पकड़े गए, उनका ही सबसे ज्यादा फाइन है। उसके बाद ओवर स्पीडिंग, बेल्ट ना लगाना, इलीगल पार्किंग, इंश्योरेंस ना होना, ट्रिपल सीट राइडिंग, इन जैसे केसेस में भी फाइन भर चुका है। मतलब कुछ लोग बाइक को बाइक नहीं समझते, फैमिली पैकेज समझते, एक बाइक पर 3-3 दोस्त चले जाते हैं और तीसरा दोस्त बीच में ऐसा बैठता है जैसे कि अपनी जिंदगी में एडजस्ट कर रहा हो। ट्रैफिक पुलिस ना तो एकदम स्मार्ट हो चुकी है, थर्ड आई उनकी हमेशा हम पर नजर रखती है, वही जो ऊपर से फोटो क्लिक करता है ना सिग्नल के ऊपर रास्तों में जहां पर आपको सीसीटीवी कैमरास दिखते हैं, तो उनके जरिए भी फाइन वसूल करना शुरू है। लेकिन मजाक की बात एक साइड दोस्तों, एक बात याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ फाइन से नहीं बचाता आपको, आपकी जिंदगी भी बचाता है, क्योंकि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है, ये भी बात याद रखिए। तो नेक्स्ट टाइम बाइक स्टार्ट करने से पहले पेट्रोल चेक करो या ना करो, हेलमेट लिया है और सीट बेल्ट लगाया है क्या, ये भी चेक करो। सेफ रहो, सुरक्षित रहो एंड सुनते रहो। All

0: गाइस जस्ट इमेजिन यार, आप ना तो एक फॉरेन टूर पर जा रहे हो नेपाल, और वहां पर जाकर आपको सब कुछ फ्री में देखने का, घूमने का, रहने का मौका मिले, तो मौके का फायदा तो उठाओगे ना आप, तो यही आपको मौका मिलने वाला है। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, क्योंकि देखो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते होगे, रील्स बनाते होगे, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। नेपाल टूरिज्म एम्बेसी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकाली है, जहां सिलेक्टेड क्रिएटर्स को नेपाल घूमने का मौका मिलने वाला है फ्री में। मतलब आपका इंस्टाग्राम ट्रैवल्स फोटोज इनसे भरा हो तो ड्रोन शूट्स, कैफे, रील्स, माउंटेन्स और सिनेमेटिक ट्रांजिशन आपको एकदम बेहतरीन आते हो, फायदा उठाइएगा। अब सिंपल है कि यार कंडीशंस क्या हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, फॉलोअर्स और एंगेजमेंट अच्छे होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको नेपाल टूरिज्म प्लेस को प्रमोट करना होगा, तो उसके लिए वीडियोस, रील्स और फोटोज क्लिक करने होंगे। मतलब वेकेशन भी और असाइनमेंट भी आपकी होने वाली है। चलो ये तो सुनहरा मौका है, तो आप भी कंटेंट क्रिएशन करते होगे तो नेपाल टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, और वहां पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। Stay tuned.
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: नैराश्य, बेचैनी, झोपेची समस्या, भीती, चिडचिड, आता मानसिक आजार लपवायचे नाहीत, उपचार घ्या, समाधान शोधा।
4: डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर, मानस उपचार व व्यसन मुक्ती तज्ञ।
3: सततची चिंता, अतिविचार करणे, भीती वाटणे, धास्त बसणे, भास होणे, घाबरणे, संशय करणे, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसनधीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान। समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या।
4: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, HP पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, आंतररुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट 8888992688। Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 937171453 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati संभाजीनगर।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: बोलना तो सभी को आता है पर सुनना बहुत कम लोगों को आता है। कभी किसी की बात सुनते सुनते उसकी खामोशी सुन ली तुमने, या उसकी हंसी के पीछे छुपा दर्द महसूस किया कभी? कुछ लोग बोलते बहुत हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो चुप हो गए तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या हुआ, और कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वो बोलकर थक चुके होते हैं पर सुनता कोई नहीं। अगली बार जब कोई कुछ कहे आपसे तो उसे सुनना मत, महसूस करना, तब जाके आपको उसकी कहानी पता चलेगी, और इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: कभी सोचा है जिंदगी अगर सिर्फ दो मिनट की होती तो आप क्या करते? शायद पहला मिनट माफ करने में निकल जाता उन्हें भी और खुद को भी, क्योंकि अब शिकायत का वक्त नहीं बचा, और दूसरा मिनट शायद उन्हें देख लेते जिनसे मोहब्बत रही थी, या एक कॉल कर लेते माँ को, या बस आंखें बंद करके उन लम्हों को जी लेते जो हमेशा याद रह गए। जिंदगी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असल में वो बस दो मिनट में सिमट जाती है। जब कोई चला जाता है, जब किसी से जुदा होना पड़ता है, या जब कोई आखिरी बार ख्याल रखना ऐसा कहता है, तो आज सोचिए मत, जी लीजिएगा, माफ करिए, मोहब्बत करिए, और बस रुकिए मत, क्योंकि शायद हमारी जिंदगी भी कहीं ना कहीं सिर्फ दो मिनट की कहानी है। क्या पता है कब कहानी ये पूरी हो जाए।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
2: इंजिनियरिंग ची डिग्री आहे पण हाता जॉब नाही ना,
3: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स।
2: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनियरिंग।
3: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
2: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन and control engineering, जिथे शिकल म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं। सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
4: अटेंशन फ्यूचर रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स,
5: MGM यूनिवर्सिटी इज नाउ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन्स 2026 एंड 27। तसेच LLB नंतर करा LLM, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मध्ये 2 वर्ष, तर बिझनेस मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम।
4: इफ यू आर रेडी टू टेक युअर अकॅडमिक जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, दिस इज युअर अपॉर्च्युनिटी।
5: लास्ट डेट टू अप्लाय 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर. क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515. ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
3: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ